गोदुले होपी गाली सवलिंगी सुस्किरी गाले जुपास विजय गोरी गोदुले होपी गाली सवलिंगी सुस्किरी सुस्किरी।